तेरी वाणी आई कोई ना वो ना क्या ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: राग मलार दी रंभता करके पहले पातशाह मेरे गुरु नानक साहब सचे पातशाह
1: चौपदे कर पहला
0: चार पदियां वाला शब्द पहले कर सुरताल दे विच विद्वान लिखते जदों मारे लाहौर जिला टप के मिंट गुमरी नूं जा रहे सी ना उत्थे रस्ते दे विच मारे साहब पांच चार थावां ते रुके ते ओह भागे बिन भागां वाले जी इस तरह दे सी ओह मारे नूं बहन ना देण जिथे मारे जाके बैठ के सत्संग करन उठा दिया कर कि बाबा इतों चल जा बाबा इतों चल जा ते मारे साहब जी अरदास कर दिती। ये साखी तुसी बड़ी बार सुनी होगी पर अज आप करम वाले क्योंकि कुछ विद्वाना ने लिखिया भी जदों मारे ने आरंभ किया मलार राग ते उस जगह ते महाराज साहब ने खेड वरताई कि महाराज साहब जी उन्हां नूं कहिंदे वसदे रहो भला होवे। अगले नगरां च गए ते उन्होंने बड़ा कीर्तन सुनिया बड़ी भावना नाल प्यार किया जिस तरह अज आप संगतां फुलां दी वरखा करदे हो आओ भगत संगत विच रब वसदा जी कोई सिंह जोड़े झाड़दा है कोई तवाई भावना है उन्हां बड़ी सेवा कीती कीर्तन भी रूह नाल सुनिया भाई मरदाना जी नूं बस्तर आदक प्यार दिता भेटा दिती ते मारे सच्चे पातशाह ते चलो अकाल पुरख है वह तो अज तक जिक्र नहीं आता कदे भी विद्वान किसी ने किया हो कि मारे साहब ने किसी तो कुछ मंगया हो क्योंकि वह तो दाता है वह तो सारिया नूं देण वाला ते उत्थे मारे अरदास कर दिती कि हे करतार अकाल पुरख वाहगुरु ये नगर उजड़ जाए ते भाई मरदाना जी हस पे कहिंदे महाराज समझ को नहीं लगती जिन्हां ने धक्के मारे आ कोल बोल कबोल कहया उन्हां नूं तुसीं कहा है वह वसदे रहो भला होए ते जिन्हां ने इन्नी सेवा कीती कीर्तन कथा सुनिया इन्हां नूं जाड़ता ते मारे कहिंदे भाई मरदाना जी जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत रंग कहिंदे भाई जो हुंदा चंगा महाराज मैनूं वी खोल के दस दिओ पातशाह कहिंदे इन्हां नूं अरदास तां कीती आ वी वसदे रहो भला क्योंकि जे ए उजड़े ते जिथे जाणगे अपने अरगे होर पैदा करनगे संगत ही है ना बंदे दी जिहो जी हो जे बच्चा तुहाडा तुहाडी धी संगत चाहूगी वो दस्तार

तौ प्रसाद सवैये श्रावक सुत समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुत सुतादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे तो प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ति के माते मतंग जरे जड़ संग अनुपूतंग सुरंग सवारे कोर तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पूजान के भू बलि बिन शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नंग ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजल गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवि के भगवान के भूपत कौन गए नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ धान दयादम दान तो संयम नेम अनेक भी सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पौन आहार जति जे धार सब ऐसो विचार हजार ग दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबासु साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लाएंगे तोर अरिद मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरिया रव चारे सार की धार वछैया तोर देश मलिन मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबात नीचक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक साचर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन्न प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जग सत्र सभा अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान जादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपद अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रथ है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कह भयो जो दो लोचन मूंद का बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ फिर सा समुद्र लोक गयो पर लोग गवायो बास कियो बिख्यान सु बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबैद बितायो साज कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो काहुल पाहन पूत धरियो सिर काहुल लिंग रे लटकायो काहु लखियो हरा वाची दिशा महे काहु पचाह को

दीन अकलंक रूप अपार अंशी जितेज उदार अनभिज रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूप्रित भान दस्यार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल करम विहीन सब करम

अनुपचार वकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड ज्ञानंद ते ब्रह्मांड कीने सो 14 खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निरपार के ब्रह्म विषण विचार के राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सेंद बिन नगेंद्र गए मच्छ कच्छ फणेंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद ओमकार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम।

हरि गुफे हरि शिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेघ हरि अदोघ हरि अद्वैग हरि अकाल हरि अपाल हरि अशेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि मंत्र हरि सुतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अवर्म हरि अकर्म हरि अजा हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अशेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तु हि तदस्तु हि नदस्तु हि नदिस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमेतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभैतु हि अशुतु हि अशैतु हि जतस्तु हि प्रतस्तु हि गतस्तु

नाचत फिरत मोर वादर करत घोर दामनी अनेक भाव करी हुई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज, इंद्र सुना राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याज ब्रह्मा से न बेचारी, सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस किया दीन, सदा जुगन की चौकड़ी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार बिचन के तिवेद और पुराण के तिथिमृत समूहन के होय होय बिते है। मोनिनी बदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंश अवतार के ते काल भस भय है। पीर और पिकावर के ते गणना परत ते भूम ही ते हुए का फेर भूम ही मिले है। जोगी यदि ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी, शत्र की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरस देत, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कत क्षेत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिले सर दुर्योधन से भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। शिष दे कर अनेक तूपति कपट भेद, कोस दिया अनेक दानी बाबत है। शीत का कहा भयो मन जो पकड़त अनेक दंत, सूतना दंडौत अष्टांग अथ तीस का भयो रुग जो पटार रहे और मुख, मानते न मुंड ने हो रायो आदेश को। कामना अधीन सदा दाम न प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीत पट कट जग कान में खजूरा धत, मुंड छटकत मित्र पुत्र होंगे शोक सो। आको चलैया फल फूल को बछया, सदा बन को भ्रमया और दूसरों ना भोग सौ। कहा भयो भेड़ जो घसत सीस वृक्षन सौ, माटी को बचया बोल पूछ ली जा जोग सौ। कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण, एक भावना भीन कैसे भेट पार लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर, सदा घन घोर घन करी करत है। एक पाए ठाटे सदा बंद में रहत वृक्ष, फूक फूक पाव भूम त्रावक धरत है। पहन अनेक जुग एक ठोर बात करे, काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के बीन महादान में ना हो जा लीन, भावना यकीन कैसे भी कहतरत है। जैसे एक स्वांगी कहो जोगी या बैरागी बन, कबू सन्यासी वेद बन कह दिखावई। कहो पौन हरि को बैठ लाए तारी, कहो लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई। कहो ब्रह्मचारी कहो हाथ पर लगाया बारी, कहो दंडधारी होय के लोगन प्रमावई। कामना दीन परियो नाचत है नाचन सो, ज्ञान के बीन गत ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकारे परे शीत काल, कुंचर अगद अनेक दा पुकार ही। का भयो जो काल वत्र लियो कांसी भी, चीर चीर चोरटा कुठारन स्वामार ही। का भयो फांस डार बुड़ो जड़ गंग धार, धार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना बीन गते ब्रह्म को कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप से तहे से जो पपाया, तापना तापना अनेक तनक अहल सहत है। जाप के किए तो जो पपायत अजाप देव, पूतना सदीव तू ही उचरत है। नब की उडित जो नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल करत है। आग में जरित गत राण की परत कर, पताल के बासी क्यों भुजंग ना करत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को रोगी पायो, को ब्रह्मचारी को जति जन मान गो। हिंदू तुरक रास जी माम सफी, मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सो राय कर ही मोई, दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्म मान गो। एक एक सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहरा मसी सुई पूजा निवाजोई, मानस सब एक पै अनेक को ब्रह्माव है। देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू, नारे नारे देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान।

कन का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होएगा फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर से अनेक दूर पूरत है दूर के कन का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नाते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पानी कहाएंगे। तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट हुए ताहित उपज सब ताही में समाएंगे। केत कच्छ मच्छ केत उनका करत भच्छ केत अच्छ वच्छ हुए सब पच्छ उड़ जाएंगे। केतना बीज अच्छ पच्छ को करेंगे पच्छ के तक प्रत्यक्ष हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहा काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज युवा तेज मैसी तेज लीन ताहि दे उपज सब ता

ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हरे देवता विरोध हरे दानो बड़े बोध हरे बोधक प्रबोध हरे जापसी घस हरे चंदन लगाए हरे चुआचार पूज हरे पहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे वितन लगाए हरे शापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे

अविनाशी परे अंग परापरम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र तनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अशय आदव अजुहंग न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अशेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न कूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निर्युक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तं अशयाद अविक्ते यथापि विभुक्तं अशयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं।

ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना साकी ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाकी ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहो कांज के मंज के परम पूले कहो रंग के राज के धर्म अलूले कहो देश के पेश के धर्म धामे कहो राज के साज के वाजता में कहो अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहो सिद्ध के बुद्ध के बृधला दे कहो अंग के रंग के संग दे के कहो जंग के रंग के रंग पेखे कहो भरम के कर्म के हरम जाने कहू धर्म के कर्म के परम माने कहू चार ज्येष्ठा कहू चित्र रूपं कहू परम प्रज्ञा कहू सर्व भूपं कहू नेह गृह कहू देह दुगं कहू औषधि रोग के शोक सोखं कहू देव विद्या कहू दैतवाणी कहू यक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहू राजसी सात्की तामसी हो कहू योग विद्या धरे तापसी हो कहू रोग रहता कहू जोग जुगतं कहू भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहू देव कन्या कहू दानवी हो कहू यक्ष विद्या धरे मानवी हो कहू राजसी हो कहू राज कन्या कहू सृष्टि की पृष्ठ की ऋष पुण्या कहू वेद विद्या कहू व्योमवाणी कहू कोकी गाप कथा कहानी कहू वज्र सारं कहू वज्र रूपं कहू मधुर वाणी कहू शूद्र स्वरूपं कौ वेद विद्या कौ काव रूपं कौ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कौ परम पुराण कौ पार पावा कौ बैठ कुरान के गीत गावा कहु शोध से गंग कहु ब्रह्म धर्म कहु वृद्धावस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राजताजं कहु राजरीतं कहु पूर्ण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरवी तोर की पारसी हो कहु पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश भाग्या कहु देववाणी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारं कहु यंत्र कहु शस्त्र तारं कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगला चारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मरेज पाख्या कहु वेद रीतं कहु नृत्य विद्या कहु नागबानी कहु गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहु

त्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं सरूपे नमस्तं नमस्तं स्वस्तं अभूते ता प्रसाद पादड़ी शांद अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनाथ अंतुट तेज अनखुट बंधार दाता दुरं सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंशी जगा दाता दुरं सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंशी जिगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत भरम दाता दयाल अनभूत धरम जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र।

जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतुल जय ध्यान काज मुंजन मह अनंत कई कलप जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा संत कई कलप एक आसन बितंत के जतन जोग विद्या विचार साधन तद पावत न पार कई उर्द भाव देशन ब्रह्मांत कई उर्द मध्य पावक झुलांत कई से मृत शास्त्र उच्चरंत वेद कई को का कथत कतीव कई अगन होत्र कई पवन आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र पाश नै ददव देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत को वेद रीत जग्याद करम को अगन होत्र को तीरत हरम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचारणी नैगतास पायत ना पार कई तीरथ तीरथ भरम शुभ हरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचारणी तदप्तास पायत ना पार कौ राज रीत कौ योग धर्म कई स्मृत शास्त्र उचरत सो करम निवली आद करम कौ हस्तदान कौ अश्वमेध मको बखान कौ करत ब्रह्म विद्या विचार कौ योग रीत कौ विरद चार कौ करत जक्ष गंधर्व गान कौ धूप दीप कहु अर्घ दान कौ पितृ करम कौ वेद रीत कौ नृत्य नाच कौ गान गीत कौ करत शास्त्र से

कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत और लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पन प्रजंत नहीं तदपतास पायत ना अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्टि देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भो करत।

जयजंपो युगण जुअयुअंग भय कंपो मेर पयाल भुअंग तप्ताप सरब जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अशेद अश्यंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जय ठट्यंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रश्यंग देव अदेव बरंग।

जे अंडज सीतज जे रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बलि बंजास के फल फूल कली वो मेर आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनधूत अभूत अश्युत मतंग अनगाद अव्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अशेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रंग जय सूक न पोग न जोग जुगंग भु भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जक्ष भुजंग रचे मण माणक मोतीलाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज मृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जमपत वेद पुरा।

देव है भंज भंज जानी है अभूत भूत है सदा गंज गंज मानी है अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास जीव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछेज तेज मानी है सदैव सिद्ध सुधा प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है दुख अदाग अदग है अभूत अभ्रमा भीग है न तात मात जात है न पाच है न भरण है अधिक अशेक अभीक है सदैव विश्व भरण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरम है जिमी जमान की विखय सदैव करम भरम है अद्वैग है अभीक है अलेखनाथ जानी है सदैव सर्व ठौर में विशेख का विशेख आन मानी है न यंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अपुराण नीत नीत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में

රංගහන මානහන මෝතන සාගහන සංකහ නජචහන ගන්ද්‍රභ නනරහන නාරහ නචූරහන ශාහුහ නශාහකු කුමාරහ නනේහන ගේහන දේහකු බනාවහ නශලහන ශෙද්‍රහන ශලකු මිලාවහ නජාන්ත්‍රහන මන්ත්‍රහන තන්ත්‍රකු සරූපහ නරාගහන රංගහ නරේගහන රූපහ न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न शल है न क्षेत्र है न शय को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है भेक है न तात है न माता है ख्याल अखंड रूप है अशेद है वेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न पेद

न शीत है, न सूच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न शैल है, न क्षेत्र है, न

जच्छ गंधर्व देव दानु अब्राहम क्षत्रिय माहे वैष्णके बिखै बिराजा शूद्र भी वह नाहे गूढ़ गौण न पिहिल पिहिकार ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य उरद न भूम आकाश स्वरूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिया जह जूत शेष नाम संस्पन्न नेत पूरण होत शोध शोध हटे सभा सोर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकब गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सभु मेल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो।

नेह गेना नेह स्नेह अभेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चेहना वरण जागो जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आदेव अपाल दीन बंद प्रवीण श्रीव सर्व को करता बरन चेहना चक्र जागो चक्र चेहन आकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेखना वरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरण दुष्ट गंजन चतुर पंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्टि करता।

धर्म की अनकरम जित कीन तौन पसार देव अदेव गंधर्व किंदर मच्छ कच्छ अपार भूमकाल जले तले मैं मानी है यह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरता श्रेष्ठ कर दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मैत्र पालक शत्रुघालक दीन दयाल मुकंद अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हु के काल दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्वते प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वके अनकाम सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजपहाम सर्वभुगता सर्वयुगता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वगर्भ अधीन सर्वसिमृतिं सर्वशास्त्रन सर्ववेद विचार दुष्टहर्ता विश्वभर्ता आदरूप अपार दुष्टदंडन पुष्ट

वेद व्यास करे कई दिन कूट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावै शिव रुद्र अमुक चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थकै सब गुण चक्रत से भेसु मुख चार आद आंजना मध्य जागो भूत भव भगवान सत द्वापर तृतीय।

कहा कर्म को कर्म है, कहा भ्रम को नाश, कहा चितन की चेष्टा, कहा चेत प्रकाश दोहरा, कहा नियम संयम, कहा

खंड अखंडन खालखित खून खिते दामनी दमंकन ध्वजा परंकन फणी फुंकारन ज्योत जिते सरधार विभरकन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अधे दामनी प्रहासन सुशभ निवासन सृष्टि प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन निर्दान राचन धर्म वृथे सुरनांत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी महासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करी अगोग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्टि उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाग बकारण शस्त्र प्रहारण साध मथे सैति स्नान अष्ट प्रवाहन गोल निवान तेज अचलंग जय जय हो सी महासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारं चिच्छुरारं धूम दुखारं द्रपते दाढ़वी प्रतंते जोग जयंते मणि मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरत प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी महासुर मर्दन परम विनाशन धर्म धुजे घुंघरु घमंकन शस्त्र झमंकन फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाद प्रहासन सृष्टि निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रभा शुद्ध सनाहे अगमथा है एक वृते जय जय हो सी महासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंद दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावर कुमारी अधम उधारी नरक निवारी आदि कथे केंकणी प्रसुभन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल चले जय जय हो सी सब थौर निवादन बाय पताल आकाश अनले संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरण तोंद तवे दुग दोग दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता तर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जप जिवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकर खान आद अनिल अगाध अभे चंचल चखंगी अलग भुजंगी तोंद तुरंगण ते छिक स्तरे करकसा गुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामने दमंगे के हर नंगे आद आतंके क्रूर कथे जय जय होती रक्षा सुर खंडन सोम चक्रत सोम मथे बारज बलोचन बृतंज मोचन सोच विसोचन कौच कसे दामने प्रहासे सुख सरनासे सो वृत सुभासे दुष्ट करते चंचला प्रेंगी तेज प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी महासुर मर्द आद अनाद अगाध उर्धं घंट का विराजा रुण झुण बाजा भ्रम भय भाजा सुन सुरंग कोकल सुन लाजा कैलवेग भाजा सुकुप राजा मधुरंग।

चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष आरोधन क्रूर मृति धुमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विधुंसन शोध मते जाल भयंती सत्र मतंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जाओ सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गति खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गति प्रलाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृति स्वर्ण प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरि जय जाओ सी मैं खासुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्टि करे दामनी प्रकाशे उन्तन्नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकर्कण सर्वर वर्खण दुष्ट प्रधर्कण।

दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सना है दुष्ट प्रदा है अर्ध गाहे दुख हरे गंजन कुमार अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंति जय जाओ सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंति कारण करी ली गर गहिली जो जचली तोंद मते अष्टैल चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद गति डुग डुगी दमंग बाघ पवंग बुझा फरंग शुद्ध गति जय जाओ सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापां विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानंचार नरक निवार पतित उधारे मुंड मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान अर्दन बिड़ाल वधे सरदार विवखन दुर्जन धरखन अतुलित अमरखन धर्म भुजे धूमराज विध्वंसन श्रुण चुनसन सोम्भ न पात्म सोम्भ मथे जय जय होसी मैं खास

विचार जिम की हो आप करते पसार यद्यप अभूत अनभय अनंत कहो यथा मंत्रण तंत करता करीम का आदर कृपा लद्वय अभूत अनभय दयाल दाता दुरंदुक दुग्रह जनेत ने

कई मूड़ पद्र पूजा करंत कई से दशा सूरज सिवंत कई कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वा काल खाए अंश जि तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्व अनाथ सब रोग सोग ते रहत रूप अनभ अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना तल जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक अहम जय सत्र मैत्र दो एक सार अच्छा स्वरूप।

शत्र मित्र निपुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह रंग रूप जय खेद भेद ने कर्म काल सब जीव जंत की करत पार ऊर्ध्वं बृहत।

दीनन की प्रतिपाल कर निशांतु बार गनी मन गारा पाच पशु नग नार नाध सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल की नी करम विचार दीन दयाल दया निर्दोखत देखत है पर दीन न हार दाद है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल लार खंडा खंड प्रचंड पहाड़न पूरन प्रेम के प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद बीज कतिब अभेद उचार रोज ही राज रोगत राजिक रोग रुहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख।

पदतिवकेन्द्रि पद्मा पदपायि आद अनंत अगाध अद्वैक्सु भूत भविक भवान अभः अंतवीन अनातम आप अदाग अदोग अशिद्र अशः लोगन के कर्ता हर्ता जल में थल में भरता प्रभः दीन दयाल दया कर त्रिपत सुंदर श्री पद्मा पते है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न पोह न भय देह विहीन सने सबूत नेह विरक्त अगेह अशह जान को दीत अजान को दीत जमीन को दीत जमान को दह काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मा पतल है रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते भव भांज बचाव सत्र अनेक चलावत घावत।

अस्पताल रसादल जाच्छ भुजंग सब सिरने आवे पाए सजा नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ ना आवे ना रस्ती चतुरानंद से रुम नारिक से सबू मिल गायो वेद कतेव ना भेद लखियो सभार परे हर हाथ ना आयो पाए सकने पार उमापत सिद्ध सनात सनातन त्यायो त्यांतरो तह को मन में यह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे वेद न पाए सके अनभेद को खीरत है अंशेज पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे आद अनाद अगाध अभेख अदवैग जपियो तिन हे कुल तारे तीरथ कूट किए स्नान दिए वो दाद महाभ्रदारे देश कर भेष तपो धन केस धरे न मिली हर प्यारे आसन कूट करे अष्टांग धरे

अत्र के चलैया क्षेत्र छत्र के धरैया छत्रधारियों के चलैया माँ सत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया उसान के दिवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरोध।

सबकी यार भी आराधा तेरे नाम है। फरागे फिरंगे मान कंधारी गुरे सी जान है, पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मघेले तेरी मान सो तपस्या कर, दृढ़ तिलंगी पहचान धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहले माघ देश के मघेले वीर, बंग सी बुंदेले पापुंज को मलत है। गोखा गुन गाव चीन मचीन के शीश न्याव, तिबते ध्याय दुख देह के दलत है। जिना तो इत्यायो तिना पूरन प्रताप पायो, सर्व धन धाम फल।

और कहू पे न दीन साद अधीन कहियत है। पायन अपार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते सस राशि किरे सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते है विचार पैना पूरा न को पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूरण अवतार निराधार है न पार अपार पाइया न पार पै अपार कै बखानिया। अद्वै विनाशी परम पूरण प्रकाशी महारूप के राशि है अनासी गै गमानिया। जंत्रु न जात जाके बाबू न मायता की पूरण प्रभा की सो छटा कै अन मानिया। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को यंत्र है के मोहनी को मंत्र है ने यंत्र कै कै जानिया। तेजू को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है के रूपों को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है कैश विनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। कालू के काल के सत्रण के साल है के मित्रण को पोखत है के वृद्धता की वासी है। जोगों को यंत्र है के तेजों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बात है के बुद्ध के घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है। विश्व को परण है के

हेंगुला हिमा लगावे हा बसी हलब भी ध्यावे पूर भी ना पार पावे आसा ते अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाथ अदवा विनाशी है अंजन भी

है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के शीर कहते शिरावद छाज कहते छतरा नेर छपा कर कहते छप कालिंद्री के कुल के हंसी सी सिहारू मेहरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली साधो सिंध रूल का पारा सी पलाऊ गढ़ गरूपा कैसी रामपुर सूरा सी सुरंगा बाढ़ के रही चूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के पटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीता सी सुरंगाबाद नी कै सुहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नीर हंस कैसी हाजीपुर देखे मुहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा घेर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजारी सुहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी कंधारी गोर गखरी गर्दाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरा पलाऊ का

कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट ना जाए। ना ओ मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चुकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जिंदन कर कै कीती रात। खसम

से जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

चौपाई बहर असर का काट समाथा श्री अस्केत जगत के नाथा दुतिबान सौ दौर कर काट दयो असधुज नर नाहर पुनरा छस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत।

न होए चित की इच्छा, ताव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम घावो। आप हाथ दे मोहे बचाओ, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब है कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिय। सब बैरन को आज संघरिय,

हे पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय, उजो सदा हमारे पच्छा, श्री असध्वज ज्यों करिय रक्षा, राख लेहो मह राखन हारे, साहेब संत सहाय।

कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे अस दुजताव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिया है, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी।

मत ऊची मत पत का राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार। खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारण जी तपियाने जी खड़े।

अखर वादा घाटा भूल चूक माफ करना, बाणी सचखंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुणदे सर्व

सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है, प्रसादा छक कर गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करो।

पौड़ी अपने आप साजियो अपी नेर छू ना दुई कुदर साजी करा से निटूचा दाता करता तू तुझ गरे कृसाओ तू जानो ही सबसे दिल

सदगुरु पुटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसन दे से

जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। सच्चा साहिब सरस वालियो जिनकी तिस पार पया कहो ना करते कि हम बाता।